0: से अनुराग नुहे अरु अरुणिमा
1: अरुणिमा
0: हाँ मो झिया अरुणिमा
1: अरुणिमा मु तबे कोठे
0: आग्रा रे मो घरे
1: आपण
0: मु अंबुज अंबुज सानी
1: अंबुज सानी
0: हाँ आपण ट्रेन रे एकाका दिल्ली जाउथिले मु आपणकर अभिभावक साइज थिली आपण बर्थपुर को
1: मने पड़ला बर्थपुर को चढ़ला बेले मो मुंडटा बुलेदला मु पड़ी गली तापरे मु किछ जान नै।

0: que é
1: आपण
0: मु मिस्टर महंती
1: किंतु एठी तो मिस्टर महापात्र
0: ओ आपण आदित्य महापात्र को कहू छन
1: हां हां
0: किंतु से तो एठी रहउ नांती
1: आओ
0: आपण तले किछ जानन
1: कोन कोन हि छी तंकर
0: क्षमा करबे आपण तंकर
1: मु माने
0: ओ के आत्मिया
1: आज्ञा
0: आदित्य बाबू को स्त्री हठात एक्सीडेंट रे मरी गले
1: एक्सीडेंट रे
0: आज्ञा नणंद संगे नई के गाधे हो जाए हठात गोड़ खसी गला तेरे स्त्री मृत्यु भाग्य बदली दला दुर्घटन किसी दिन आगर से स्त्री ना खूब मोटा अंक गोटे इन्सुरेन्स पलिस करते स्त्री मृत्यु परे परे से ही गले लक्षपति तो किसी दिन तेज सेकेंड मैरिज कर आड्रेस लिखिद
1: अनेक धन्यवाद मुझे नमस्कार रिक्सा रख एठी
2: उषा उषा अरे अनुराग सोइला उषा
3: इमिति चिल्लाउछु काहेकि अनुराग उठि परबो
2: एते बड़ो पिला हलानी मा कोनो न होले निद होउनी एसो बड़ अभ्यास ता मा सिखे दि जाइछि हेले मु कहि दउछु सर आउ टिके बड़ हे गले तको बाहर हॉस्टल रे हमको रखिबो पड़िबो
3: देखु छी मु नुई तमे सतकु सत अनुरा बिमाते पलटि जाइछ

0: ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ମାର୍ଗ ଖୋଜିବାରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ ରାସ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦରେ ଲେଖି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल

0: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपण माने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचार करुछु भक्ति गीतर विशेष कार्यक्रम वंदना आलेख एवं उपस्थापनारे बसंत महांती।
2: ସେ ନୀଳାଚଳବାସୀ ନୀଳାଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସେ ହରଣ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଥରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା ଝରିଯାଏ, ବଦଳିଯାଏ ପରିବେଶ, ଦୁଃଖ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ସୁଖରେ। ବାରମ୍ବାର ସେହି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମିଳେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁଖ, ତାହା ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପାବନ ପରିଣତି ପାଇଁ ନୀଳାଚଳ ବିହାରୀଙ୍କ ନାମ ଭୋଜନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषः पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वालोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां सम्बद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपंचाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य

0: आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिक रूपेण निर्मितं हिमशिवलिंगं द्रष्टुं च प्रायः 88-3,000 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला 20-20 विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: आपण माने कार्यक्रम सुनुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु सुनंतु आजि प्रचारित हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्कै सूचना। आमर स्वास्थ्य सकाल 7:10 आलोचनार विषय रहिछि अस्थिर सुरक्षा ओ जत्न। आलोचक डाक्टर अजित कुमार कर। प्रभात परिक्रमा सकाल 7:25 कथिका सकाल 7:35 विषय रहिछि नैतिक शिक्षार आवश्यकता। ए संपर्करे कहिबे मनोरंजन मिश्र। अंजलि सकाल 7:40 शिल्पी प्रतिभा प्रधान संगीत प्रसन्नजित सिंह। श्रीक्षेत्र माधुरी सकाल 8:30 एथिरे शुणिबे रथ निर्माण ऐतिह। आलोचक डॉक्टर सुरेन्द्र कुमार मिश्रा। वैदेश विलासर 23 भाग प्रचार करू सका 8:45। गीत गीतिका सकाल 9 नाटक भंज कवि सम्राट दिन 10 रचना रजत कुमार कर प्रयोजना रमापद नंद। अवलाखित दिन 11:10 शिल्पी सरिता पंडा एवं प्रदीप कुमार फल्लई। दिन 11:30 गोपाल उगाल परेषण करेंगे धरणीधर बेहरा और साथी मंजुल मध्यान श्रोता अनुरोध हिंदी और ओडिया कथचित्र गीत प्रचार कर आज दिन 12 डाक्तर को पचारि बुझा दिन 12:30 विषय रही मधुमेह रोगी खाद्य और स्वास्थ्य जत्न। आलोचक डाक्तर संबित कुमार सुबुधि। खंजणी भजन दिन 1:10 परेषण करेंगे त्रिविक्रम सेनापति। नारीमहल दिन 1:20 आलोचन विषय रही पीड़िता क्षतिपूरण आईन आईनजीवी संजीत दास सहित आलोचना। गांधी चर्चा दिन 2:45 विषय रही गांधीजी समयानुवर्तिता आलोचक नारायण प्रसाद जेना। ओडिया कथचित्र गीत प्रचार कर अपराह 5 जुवबाणी मल्हारे शुणे गीति कथा आसी बरसा हसुची चषा अपराह 5:30। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर 68 भाग प्रचार कर संध्या 6:10। संध्या 6:30 प्रचार कर आलबम ओडिया कथचित्र गीत राति 7:02। कलाहांडी जिला हालचाल राति 7:25। पल्लीमंच राति 7:30 एथिरे आलोचनार विषय रही खम्ब आलु चाषरु अधिक लाभ। ए संपर्क आलोचना करेंगे डॉक्टर सुशांत कुमार जट। हिंदी कथचित्र गीत राति 8:02। इंग्राजी कार्यक्रम राति 8:30। सांप्रतिक घटनावली संबंधित कार्यक्रम राति 9:30 रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली। नाटक भक्त वत्सल जगन्नाथ राति 10:02 प्रचार कर रचना नारायण चंद्र महापात्र प्रयोजना रवींद्र कुमार दास। कर्णाटकी शास्त्रीय संगीत क्रम में मांडोलीन वादन परेषण करेंगे यू श्रीनिवास राति 10:30। शुणिले आज प्रचारित होगा थिबा कार्यक्रम संपर्क में सूचना। आपण माने कार्यक्रम सुनुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारिबे किछि समय मध्यरे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतर रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष

0: से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: ଠିକ ସମୟରେ ବୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଅମଳର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଆନ୍ତୁ।
1: ଚାଷ ବିଷୟରେ ଚାଷୀ ଠାରୁ ଭଲ କିଏ ଜାଣିଛି? ବିହନ ଠିକ ସମୟରେ ବୁଣା ଯାଇ ସାରିଛି।
0: ମୁଁ ଫସଲ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏନପିଏସ ସଞ୍ଚୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି।
1: ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଏନପିଏସ ସଞ୍ଚୟ କଣ?
0: एनपीएस संचय होउछि भारत सरकारको प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा परिचालित एक पेंशन योजना, जेउथिरे मात्र 250 टंका रे खाता खोली टंका जमा करथिले आपनकर वृद्धावस्था रे मासिक पेंशन मिलिबो। आज ही एनपीएस संचय रे जमा करिबा आरंभ करंतु आउ निजो भविष्यत सुरक्षित करंतु। अधिक विवरणी पाई निकटस्थ जनसेवा केन्द्र किंबा निजो बैंक सहित जोगाजोग करंतु। एनपीएस संचय सहित भविष्यत पाई प्रस्तुत रहंतु।
2: गर्भावस्था प्रत्येक महिला निजर एचआईवी परीक्षा करेनी अजना आतंक दूरे रुहंतु।
3: जदि रिपोर्ट पॉजिटिव आसे ताले उपयुक्त चिकित्सा जरिया निजे तथा तो शिशु उभय एड्स भली मारात्मक रोग को प्रतिरोध करंतु।
2: मन रखंतु, एही परीक्षा एवं चिकित्सा निकटस्थ सरकारी डाक्तरखाना रे थिबा आईसीटीसी केंद्र रे मागणा रे उपलब्ध।
3: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1097 सह जोगाजोग करंतु।
2: ओडिसा राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित रे जारी।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी मात्र गुटिए क्लिक रे
1: अरे वाह
2: अजणा लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही RBI कहे
3: सचेतन हुंतु सतर्क रहंतु
4: अच्छा तुम सब रिपोर्ट देखला HIV टेस्ट हेची
5: नाही डॉक्टर बाबू सेटा कोन निहाती जरूरी
6: आज्ञा हां गर्भावस्था रे प्रत्येक महिला निजर HIV परीक्षा करैनी अजणा आतंकठु दूरै रहंतु
7: जदी रिपोर्ट पॉजिटिव आसे ताले

0: नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महाशायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे करुणा सागर प्रभु श्रीराम, तुमर नवदुर्पादल कमनीय रूपकांति मोर सर्वदा ध्येय हेउ। श्रीचरण रे प्रणाम प्रभु।
1: उपेन्द्र, उपेन्द्र
0: बाबा,
1: मु जहां सुनिली ताहा कोन सत्य?
0: किछि त अपराध करिनि पिता।
1: भंजवंश इष्ट देव दुर्गा तांकु पासरी तु पुणी रामचंद्र को आराधना करुछु?
0: प्रभु रामचंद्र ही मते कवि करिछन्ति बाबा, तांकरी तारक मंत्र जप करिबा परे ही मोर कवित्व।
1: बंद कर, निर्बोधतार गोटे सीमा अछि उपेन्द्र। तुम्हें राजपुत्र, राजनीति तुम्हार जीविका, साहित्य रे वृथा समय नष्ट करी निजर वंशगत विद्यार सिद्ध हो। धनंजय भंजंकर चक्रांत को पंड करिबा पाई आज तुमको असि उत्तोलन करिबाकु पड़िबो।
0: पितामहंक विरुद्ध रे? ना बाबा ना, मते क्षमा करंतु, ए कथा मु पारिबि नाही।
1: पारिबु नाही, मने रख उपेन्द्र, राजनीति आ कूटनीति सबल र संबल, किंतु साहित्य दुर्बल र अवलंबन।
0: से दुर्बलता ही मोर गर्व, मु सही साहित्य आश्रय नेबाकु चाहे। लोड़ा नाही ए राजप्रसाद, ए विभव, ए ऐश्वर्य, कविता ही मोर अवलंबन, कविता ही मोर जीवन।
1: कविता सेटा गोटा ख्या
0: ना, से एक स्वर्गीय अनुभूति, एक दिव्य दर्शन।
1: कविता रचना करिबा गोटे क्षणिक उत्तेजना, गोटे सामयिक उन्मादना। राजनीति भली एथिरे चिंता शक्तिर विकास पाई क्षेत्र नाही। कविता सहित कल्पनार संपर्क प्रतिष्ठा करी जो माने निजकु कल्पना विलासी बोली परिचय दियंती से माने प्रतारक मूर्ख।
2: चमत्कार कल्पना विलासी कवि उपेन्द्र उद्देश्य रे ए सम्मान सूचक वाणी धनंजय भंजर सुजोग संतान नीलकंठ कंठरे सेना संभव अन्य का कंठरे एक कथा शोभा पाइबो बोली मोर काईकि विश्वास हेउने।
0: पिता
2: नीलकंठ, एपरी कथा तुम ठारु आशा करा जाए ना। कविर संतान तुमे, कविर तुमे जनक, कवि सुलभ सरलता और कमनीयता तुमठि नाही।
1: कविर संतान, कविर जनक, ए परिचय को घृणा करे।
2: नीलकंठ
1: वीर कापुरुष क्लीप आउ पंगुर श्रद्धा नाम कवि, ए कथा निर्बोध उपेन्द्र सिना बुझि पारे ना, किंतु नीलकंठर से भ्रम हबनी।
2: तुमे तो नहीं हो नीलकंठ, तुमर औद्धत्य शास्ति दरकार। जाओ उपेन्द्र सहित निवृत्त रे मु साहित्य आलोचना करबाक चाहे।
1: ए सब कोन होची बाबा, मोर संतान को आपन विपदगामी करूछन काहे की उद्देश्य रखि आज आपन ताको मोठु दूरै नउछन।
2: बंधन करिवार शक्ति न थाई प्रभुत्व दाबी करिवा हास्यास्पद। निजर गौण मनोवृत्ति पाई तुमे निजे अशांति पाउछ नीलकंठ, निजर शत्रु तुमे निजे।
1: भूल पिता हे आपन मो सहित विवाद करछन।
2: तुम सहित धनंजय विवाद? धनंजय भज्य ठारु एते बड़ सम्मान आशा करुछ तुमे? निर्बोध, सीमा लंघन करिवार साहस करना, परिणाम भयंकर। हाँ एथर आसी पार।
1: बेस
2: उपेन्द्र,
0: कवि हेबा कौन मोर अपराध पितामह? राजवंश रे जन्म हुई कवि हेबार अभिलाष कौन पाप अन्याय?
2: किए कहिला तुमको कवि बेशर देखिले मनोर नाचि उठे? तुमको पत्र बोली ज्ञान करे ना, तुम्हें मोर शिष्य, आउ तुम आगरे पराजय स्वीकार करिबा ही मोर आनंद। मु प्रतिदिन मो भारती को प्रार्थना करी कहे, मा मराल बाहिनी श्वेत पद्मासना राजनीतिर जंजाल रे बांधि रखी मते कवि हेबार सुजोग देलो नाही सेना, किंतु मो उपेन्द्र को करुणा करमा, तुम्हार बरपुत्र रूपे जुग जुग पाई से पूजा पाऊ।

0: कौन है ला कथा कौन अरे कौन है ला
1: कौन आउ हबो सब सॉरी गला
2: आउ कौन किसी अच्छी सब तो सॉरी गला
0: अरे कौन टिके मते कुह
1: नडा भाई कौन आउ कोई भी साहित्य अवस्था पूरा सॉरी गला
2: ओ परा तारो प्रकृत चर्चा केही कॉले नहीं नंडा भाई
1: गोरंगे तुम्हें कथा को जम्मा छोट मन करना बुझला नंडा भाई देशरे रसिक माने एकजुट न हेले सबु रस सरी जीव मु रसिक चंद्र पंडित आ तपन कुमार गायक आ ये गौरांग चंद्र
3: रसिक भाई नेता अमर कवि उपेंद्र
1: हां
3: आमे तांको गुण चिन्हु आ से आमो गुण चिन्हंती
1: अवश्य अवश्य सेति पई आमो परि पंडित को लक्ष्य करी तार वैदेहिस विलास रे रहिची बुद्धि उत्तम जाहर काव्य अभिधाने विजिन नाश चरित्र सुण सावधाने
3: हां परा अमरी परे जाहर काव्य अभिधान रे उत्तम बुद्धि सेई केवल उपेंद्र लेखा भळे लेखार रस पूजी पारिबरे रसिक भाई
4: सते जंति काव्य अभिधान रे एकदम माने बृहस्पति आ
1: रे
4: ने कोण कोण अभिधान पढिछु मु टिके सुणे
1: नडा भाई
4: हाँ?
1: अरे कौन सुनिबो
4: हाँ?
1: शास्त्र कौन कहुची अमर जुमर निथेई घोष आउ सबु पाठ जाण रे घोष
3: हां परा हां हां अमर जमर निथेई निथेई घोषी आउ सबु पाठ को चाळ रे खुशी देइतिलु बेली आज परा उपेंद्र भाव को बुझी पारछु
4: ओहो एच पे निजरा आउ सु उपेंद्र रो एत्ते पढ़ई करूछु नाही उपेंद्र आउ कविता लेखी नाही तो अभिधान लेखी छी अरे साहित्य पार्टी मीठा करिवो कोन उल्टे दंत भांगी दउ छी
1: नडा भाई अरसी केसु रसस निवेदनम शिरसी
3: मालिक मालिक मालिक
4: अति सुंदर
3: बुझिलु बुझिलु रसिक भाई उपेंद्र ता कविता रे लेखी छी
1: कोन लेखी छी
3: नारी केळ जे रसपुर भक्खी न पारई ए बानर
4: कोण हला मु बानर नै नै नै मु बानर ओहो मने मन त कामदेव परी सुंदर
5: अरे बुझलो
4: टोका बस रे जेते बळे मु बाटे रे चली दाउतली कपाट फांकुरु मते खाली बांक चाहणी दउतिले माने गोबाच्छ बाटे कटा छो बुझी पड़तो
5: है अरे तू पुनी मस्ती खुड़ीबू
4: हां अरे जो तो चेहरा से तेरे काने रे चंपा फूलो बेकरे मल्ली फूलो हार रसिक पारण पक्को
1: नंडा भाई ए तुमे तो भूल बुझे छ मुको तमको कहुसली माने माने चेहरा खराब बोली कहली देखा सुंदर कखारु बड़ी होई जे माने रस ग्रहण करि परंती नहीं उपेंद्र भाषा से माने बानर
3: हां हां एकदम एकदम ठीक रसिक भाई बुझिलु अरे बानर जेमिति दांतरे नडिया चोबाई न पारी ताको खराब बोली कहे अरसिक ग्राहक सेई परि साहित्य बुझी न पारी ताको रसहीन बोली कहे आहा कथा लागी कथा खंडेर रसिक भाई
4: हो नै आ को रसता उपेंद्र बाढी दे छि जे ए मुंडरु से मुंडा खाली नारी पर्ण ना खाली श्रृंगार रस ए गुरा को बड़ अश्लील
1: अरसी केसु रसस निवेदनं शिरसी मालिक मालिक मालिक अरे हाटो मदरे ब्रह्म ज्ञान कहि काल आगेरे मुळा चोबई अंध देशरे दर्पण बिकी मु समय नष्ट करियो चाहे ना रे नंडा भाई किछि चाहे नाही बुझला नंडा भाई अलंकार शास्त्र रे मोर एते प्रवेश अछि जे रापु रापु खाली उपा भारी पडुछि एई माने मोसा जे पर भिन्न भिन्न लोक को कामडी पाळी जर व्यापी बारे सहाय्य करे साहित्य को सही पर भिन्न भिन्न लोक को बुझै कवि रचना को देश सारा
4: आउ लोक माने चिन्ही पाइले नि रचना कते
1: देश सारा खाली प्रचार करे नंडा भाई ओल गुड़िया तिहारी मिठाई सब कथा जानि छ सी जेमते बिकी बुले ठीक सेमिति कविर कविता को आमे प्रचार करू

0: महाराज
1: तुम्हे कहीं
0: घनवंज प्रति अन्या कर महाराज गंगाधर मृत्यु निर्वासित कर
1: धनंजयर विचार प्रति आक्षेप
0: हाँ कहवा को बाध्य महाराज आपण ज्योतिष वाक्य को उपेक्षा कर
1: महाराणी
0: आपण कहते से राजा किंतु
1: ना ज्योतिषर बाणी अनुसार राजनीति चली पारे ना से मोर भ्रातृपुत्र राज सिंहासन तार कौन अधिकार नहीं राणी
0: आपण नीलकंठ को युवराज करंतु आपण को उत्तराधिकारी भाव से आपण को गौरव
1: परंपरा अनुसार गंगाधर पुत्र शत्रुंजय हेबो युवराज
0: आपण तबे गोटे अंधनीति अनुसरण करी योग्य व्यक्ति प्रति अविचार करिवे ए आपणकर अन्याय घोर अन्याय
1: तोनी हो राणी घुमसर दरबार राजा धनंजय निष्पत्ति विरोध कले तुमको शास्ति दबा को से पश्चात्पद हेबो
0: महाराज
1: सुन महाराणी नीलकंठ सिंहासन पाई अयोग्य राज्य शासन पाई जे व्यक्तित्व दरकार ताठारे नाही
0: तेबे शत्रुंजय को सिंहासन देबे बोली आपण निष्पत्ति कर सारछंती
1: हां गंगाधर पर सिंहासन शत्रुंजय प्राप्य
0: ओ आपण को प्रथम स्त्री रा पुत्र प्रपोत्र को सिंहासन देबे बोली आपण तेबे स्थिर करथिले मु कि नीलकंठ केहि न
1: तुमर ए अभिमान धनंजय को विचलित करि पारिबो नाही राणी धनंजय भंज आज वृद्ध आउ तुमे आसी पहुंची तो जीवन मध्यान्न रूपर आकर्षण तुमर आउ नाही कर्तव्य प्रति धनंजय भंज एबे बेस सचेतन तुमे जाओ तबे जीवा पूर्व शुणी जाओ राणी धनंजय भंज निष्पत्ति विरुद्ध प्रतिवाद कले शास्ति अति कठोर जाओ
0: कथा एते दूर आगे बो नहीं महाराज मंदारानी एणी के तार निज बाट निज बाछी नबो
1: शुणी जाओ राणी कौन कही गलो राणी के उपेंद्र एक ही बेस आजी रामतारक साधक आज राजपोषा करे नीरव काहे कवि कहो कहो कवि
2: कविर विलय घटी महाराज
1: उपेन्द्र
2: साहित्य समाधि होती लगी दायी आपण हाँ
1: उपेन्द्र
2: पिलाटी दिन बाबा को आपण साहित्य मध्य बांधि रखिले ना कहीं क्षमता और पदलासा प्रश्रय दे कहीं
1: उपेन्द्र समस्ते साहित्य रही पारती ना अभाव अनाटन निंदा अपवाद सही निष्काम बाणी सेवा और सरल हृदय को संबल करी जे आगभर हो पारे से हुए साहित्यिक हिंसा द्वेष कपटता आउ क्षमता लालसा को संबल करी जे आगे चले से प्रकृति

0: ए भूल तुम्हें कहीं कल शत्रुंजय
1: दादा घन दादा को देखी मोर मन से जपरी दोषी नु।

0: corrotto.
1: Mucha tipi turta con hei jauchi. Tume mote komolo dei cho marani.
2: Jani baku chanti apuno. Suni baku chanti. Ethire misichi biso.
3: Biso.
1: Tume. Tume.
2: Rani nu ko rajmata.
1: हाँ मोर भूल है गोला राजो माता स्वामी को विषो दे घूमसर और रानी तो आज है जी राजो माता चमत्कार धनंजय नमस्कार नमस्कार राजमाता।

0: ये के
1: नीलकंठ महाराज नीलकंठ
0: के
1: ओ महाराज नीलकंठ ताले मते चिन्नी पारू ना
0: के बाबा
1: हा दिनेश थिले तुम बाबा आउ जहारो आखिरे धूली दे कुमार गंगाधर को तुम्हें हत्या करथिलो
0: ना मु गंगाधर को हत्या करिनि घनभंज तांगो हत्याकारी
1: मिथ्यावादी तुमे निजे गंगाधर को हत्या कर
0: किंतु एथि लागि तुमे मते दोष देई पारिबो नै बाबा मांकर आदेश अनुसार मु गंगाधर को हत्या करिछि
1: एई परि मातृभक्ति को दुनिया निश्चय मने रखियो प्रियजनों को रक्त रे अभिषेक कराई महाराज नीलकंठ नूतन आदर्श देखै जाउ छौ
0: ए सब तुमे काहे के खोजो सिंहासन रो लाभ पाहि नीलकंठ आज आउ तुम करुणा भिक्षा करू नहीं तार माँ आज ताको सिंहासन बसई जा तुम किसी ना चली जाओ
1: जदि न जाए
0: मो जीवा को बाध्य कर
1: महाराज नीलकंठ से अधिकार निश्चय अच्छे
0: मत उपहास करने कौन से अधिकार तुम नहीं तुम चली जाओ
2: प्रणाम ग्रहण करंतु महाराज
0: के शत्रुंजय तमे एठी
2: कौन शास्ति देबे दियंतु
0: ना मु किछि चाहेनी तमे चली जाओ
2: मु निश्चय चली जीवी महाराज सिंहासन तो आपनकर हेई चली छी एठी रही मोर लाभ को तेबे महाराज गोटाए खबर दबा को मु आपन पाको आसिली
0: कौन तमे कहबा को चाहो
2: महाराज मोर शिशु संतान एबे भी जीवित
0: तम सत कहो छ
2: हां हां महाराज से जीवित साले नीलकंध माने ताको रक्षा करिबार भार नै चंती ताको सिंहासन देबा पई विद्रोही कंध माने गुमसर राजधानी को आगे आउचंती महाराज सुनंतु सुनी पार्चंती महाराज
0: के
2: से मनकर कोलाहल ध्वनि सुनी पार्चंती
0: के रणभंज
2: मोर शिशु संतान
0: अरे जे बेटा को पांती असंभव नीलकंठ
2: के तू
0: घनभंज एवे भी जीवित सालेरी कंध माने ता सहित जोग दे छन से बे तुमको भय करे ना
2: घन

नीलकंठ सुरेंद्र महंती धनंजय वैष्णव चरण महापात्र शत्रुंजय कुंज बिहारी नंद घनभंज सरोज कुमार बेहरा रसिक नरेंद्र कुमार बेहरा गौरांग ब्रज सिंह नंडा सायद अब्दुल दयान मंडाराणी बीणापाणी महांती माधवी नम्रता दास प्रहरी वासुदेव माणिक संगीतांशरे कंठदान कले डॉक्टर सुधा मिश्र रचना कले रजत कुमार कर परिचालना कले रमापद नंद।

हिंदी कथा चित्र गीत प्रचार करू राति 8:02 इंग्रजी कार्यक्रम राति 8:30 सांप्रतिक घटनावली संबंधित कार्यक्रम राति 9:30 रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली नाटक भक्तवत्सल जगन्नाथ शुणीपर आज राति 10:02 रचना नारायण चंद्र महापात्र प्रयोजना रवींद्र कुमार दास कर्णाटकी शास्त्रीय संगीत क्रम में मांडोलीन वादन परेशन करेंगे यू श्रीनिवास राति 10:30। शुणिले आज प्रचारित होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना एथर शुणु पाणीपागर स्थानीय सूचना पाणीपागर स्थानीय सूचनार जणाजाइछि आसंता 24 घंटा मध्य भुवनेश्वर एवं तार आखपाख अंचल वर्षा किंवा घड़घड़ी सह वर्षा होवार संभावना रही। शुणिले पाणीपागर स्थानीय सूचना।

0: शक्ति जहाँ वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही था चेटिनार सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ चेटिनार सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: अच्छा दास बाबू आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखीतिली एवं आजि मध्य चेटिनार सीमेंट उपरे
0: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनार सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनार सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: नकली ऑफर्स प्रति सावधान
4: आरबीआई कहे
5: सचेतन हुंतु सतर्क रुहंतु।
6: शिल्पी सरिता पंडा परवर्ती गीत गाई चंती चक्रधर दास रचनारू।

0: करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु SBI सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयारी थला राइट हेले ए पजंत एते स्ट्रांग केमि अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेहिथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: शेषर शिल्पी प्रदीप कुमार पले शिल्पी गाइचंदी राधा मोहन सडंगी के रचना रो

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत

0: करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. Prime Minister Sanae Takaichi has since departed from India. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat tomorrow. During his visit, he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth around 1.06 lakh crore rupees in Balotra, Rajasthan. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister will inaugurate the new terminal building at Jodhpur Airport. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. He will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Mr. Modi will also lay the foundation stone for phase two of the Jaipur Metro Rail project. The Prime Minister will also hand over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Later in the evening, the Prime Minister will visit Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sarnand. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said, the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition, and geopolitical developments. The finance minister invited

0: Report, Anuja Kumar, AIR News.
1: In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
3: बोलो बाबा अमरनाथ की जय।
4: बाबा अमरनाथ बम बम।
5: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
6: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
7: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वह बहुत अच्छा।
5: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय

0: व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0

0: 4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି 308.6 meter ତଥା 972 କିଲୋହର୍ ଯୋଗେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ।
2: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
3: ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ
2: ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ,
3: ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଏବଂ କୋୟାଙ୍କ ଯାଏ, ସବୁରି ଭାଷାରେ
2: କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ।

मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मेरे पास तो एक बड़ा धर्म पड़ा है कि भव आदमी को गुणग्राही बनना चाहिए। वो मेरा धर्म नहीं है, तुलसीदास ने हमको सिखाया। उसने कहा है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की नपी विटार। तो ईश्वर ने जड़ और चेतन सब, तब से हमारे क्या करना। तो कहते हैं कि जो सच्चा आदमी है उसके लिए तो यही है कि जैसे हमको पानी को छोड़ देता है और उसमें जो चीज भरी है दूध में मलाई देती है उसको दे देता है, इसी तरह से हमारे जो मलाई है मनुष्य के गुण है उसको मलाई की उपमा दी है वो दे देना, बाकी अवगुण है वो छोड़ देना।

0: माननीय महोदय एठारे एहा कहिबाकु चाहूची जे पियोली फुकन जेउ षडयंत्र कार्यक्रम करिथिला तार पछरे निश्चय गोटे बड़ दलर हाथ अछि। जदि सेही दल एमानंक साथिरे नथांता ताले पियोली फुकन भली जने दिव्यांग लोक पक्षरे एते बड़ साहसिक काम करिबा संभव होइ नथांता।
1: ऑल राइट इंस्पेक्टर, आमको एमानंक उपरे जवाब देबा जरूरत नहीं। पियोली फुकन, तुम्हें गोदाम रे निया लगे छो आउ तुम्हें माने फुकन को साहाज्य करी छो?
2: आमर ए संपर्क रे किछि कहिबार नै,
3: जदि कहिबार थिले मध्य आमे कहिबु नै।
4: जदि किछि कहिबार अछि ताहले फुकन महोदय ही कहिबे।
1: पियोली फुकन, तुम्हें निया लगे छिलो?
5: हां, निया मु लगे छि।
1: वेरी गुड, वेरी गुड। कौन तुमे लैम उठो? आई मीन गुड़ नथिबा मनीष जरूर तुमर साथी रे अन्य लोक थिबे।
0: फुकन महोदय, आपन को किए किए आगु को बुढ़ाई छंती तांको नाम कहि दियों।
6: साहेब, साहेब, जदे केही भी मो काम रे मते सहाय्य करी छंदी तांकर नाम कदापि नहीं परिबिना।
0: फुकन, निजो गोड़

0: जो हो परिवार दोसो
1: दोसो विद्रोह किपरि दोष क्यों विद्रोह जदि देश को स्वाधीनता दबा दोष ताले पियाली फुकन निश्चित भाव दोषी किंतु ए विषय निर्णय नबार अधिकार आपण मानकर नाही साहेब आपण मानकर नाही जदि मु विद्रोही तार न्याय करिवे आसाम रा राजा आसाम रा जनता तुम मानकर से अधिकार नाही ना
2: कैप्टन न्यूविल कंटिन्यू योर प्रोसिक्यूशन
0: यस योर ऑन एई षडयंत्रर नायक पियली फुकन निज दल सहित बारूद घर ध्वंस करी एई देशर शत्रु मानंक पई सुजोग सृष्टि करिनेला एई व्यक्ति आसाम रो कोण अनुकोण रे विख्यात तार वीरत्व पई नहे तार चातुर्य पई नहे कि तार देश प्रेम पई नहे बरं कुख्यात तार घृण्य कार्यकलाप पई
2: इज देयर एनी विटनेस
0: यस योर ऑनर दारोगा बाबू साक्षी को हाजिर करांतु दारोगा बाबू साक्षर जमानबंदी नियंतु
3: ठीक अछि साहेब नर्तकी तू शपथ करी कह जहां कहिबी सत कहिबी
4: मु जहां कहिबी सत कहिबी
3: एई आसाम रो आदिवासी मानन को जानि छ
4: मु मात्र जण को चिन्हि छी
3: के पियली फुकन
4: हां
3: ठीक अछि गत शनिवार दिन इंग्रज मानन को बारूद घरे निया लागिथिला एई कथा तुमे जानो
4: जाने
3: जानी छो केमिति जानलो
4: काही कि ना से समय रे मु बारूद घर शिविर रे थिली
3: बारूद घर रे निया केमिति लागिला
4: केही जने निया लगाई तला एथि पई
2: दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट
3: डरिवार किछि कारण नाही तुमे कुहो के निया लगाईला
2: अदालत रे सट कहिवा उचित तुमे जदि जानि छो कहि दियो
4: साहिब बारूद घर रे मु निया लगाई थिली
3: कौन
1: पूरा प्रेमी छ बारूद घर निया लगाई छी मु निजे अन्य केहि न
4: अदालत रे लोकन को सम्मुख रे मु मिछ कहू नै
2: अरे तुमे तो सब दिने आमो कैंप रे डांस करो तुमे केमिति निया लगाई पारो सच कथा कुओ तुमे जदि दोषी रो नाम जानिसो कहि दियो न जानी छले चली जाओ
4: निया लगे अपन साली ता मु ही नहीं थिली
1: नर्तकी
3: व्हाट
0: योर ऑनर रागुती बोधे नर्तकी होश रे नहीं ए तुमर मुंड खराब होई गला ना कोन
4: धर्म नाम रे शपथ करी सारी छी मु मीछा कहि भी नहीं आज एते लोकन का सामने रे धर्म रे दवाई देई कहू छी बारूद घरे निया मु निजे लगई छी
0: माननीय महोदय यहा समस्त जानी छंती जे जेउ दिन एई घटना घटी छी से दिन ए नर्तकी अमर शिविर रे थिला मु निश्चित भाव रे कहि पारे जे अग्नि रो भयावहता तार मन रे अजना भय आघात सृष्टि करिवा जोगु से तार साधारण भाविबार शक्ति हराई बसी एणु से देइथिबा मंतव्य जे कोनोसी विचारशील व्यक्ति पक्ष रे ग्रहण योग्य नुहे महोदय एणु एहार कथा को अस्वीकार करा जाई पाड़े
2: ऑल राइट पेस्कर बाबू साखी को जीवा दियो कैप्टन न्यूवेल प्लीज रीड आउट योर चार्जेस
0: सर हियर आर द चार्जेस सर मिस्टर फुकन शिवसागर रो जोगो दिन रे निया लगाईवार अपराध पई दोषी अटे दुई इंग्राजी सेना वाहिनी एवं चारि जन नेविट पल्टन को हत्या करिवा अपराध रे पियली फुकन एवं आसामी माने दोषी से माने देशर शत्रु धनंजय गोहाई धनुधर हवाई एमाने बंदूक और बंदूकर बारूद नहीं पियली फुकन को सहाय्य करिथिले एति पई एवाने मध्य दोषी किंतु पियली बरुआ सेठाड़े नथिला से नदी कूल रे बसी थिला तांक उपरे आमर तरफरु कोनोसी कठिन चार्ज नाही
2: तुमे निजर दोष स्वीकार करूछ
1: हां अरे साहेब एक ही प्रकार न्याय विचार के प्रकार अधिकार एक कथा सत जे देशर शत्रु मानन को देशर सीमा रो बेताड़ित करबा पई बारूद करे मु नीचे निया लगैछे हां हां मु नीचे निया लगैछे तुमे एठारे साम्राज्य स्थापन करिवार स्वप्न को भांगी दबा पई मु बारूद घर को चलैछे
2: पियली फुकन फेडार आसामी मानन को नाम कहबा पई तुमे राजी
1: साहेब जेउ कथा को थरे कहबा को मु मना करि देइछे मृत्युदंड देबार भय देखि सही कथा मोठर केबे मध्य आदाय करि परिबे नाही।

0: सरकार जिंदाबाद
1: जिंदाबाद जिंदाबाद
0: महामंत्री जिंदाबाद
1: जिंदाबाद जिंदाबाद
0: गौदार जिंदाबाद
1: जिंदाबाद जिंदाबाद
0: महामंत्री जिंदाबाद
1: जिंदाबाद जिंदाबाद
0: गौदार जिंदाबाद
2: ए महांति सर महांति अच्छा तुम्हें जानी जो मंत्री आसुंती दाढ़ी न कटा आसो केमती
3: आई एम सॉरी सर
2: किसी गंडगोल आसंगा नहीं तो
3: ना सर केवल खेरसर लोक टिके खुब्ध होइछंती तबे विशेष किसी गंडगोल आसंगा
2: नहीं गुड
0: गौदार जिंदाबाद
1: जिंदाबाद जिंदाबाद
0: महामंत्री जिंदाबाद
1: जिंदाबाद जिंदाबाद
0: गौदार जिंदाबाद
1: जिंदाबाद जिंदाबाद
4: नमस्कार नमस्कार नमस्कार भाई माने शांत होंतु शांत होंतु
5: भाई माने मंत्री कौन कहबे चुप रहंतु कौन कहउचंती सुनंतु
4: भाई माने मु आपण मानकर ई दुखरे अत्यंत दुखी आपण मानक असमय रे मु सब बेले आपण मानक पाखरे ठिया हाई आसी आपण मानक दुख कष्ट देखी मो छाती फाटी जाउ
5: फाटी जाउ
4: कोहो संभाली हो आखिरु आपे आपे लुह झरी पडु
5: अरे फोटोग्राफर बाबू अनिच कोनो फोटो उठा
4: भाई माने मु आशा करूची आपण माने सब प्रकार रिलीफ जिनिस पाइथिबे हां हां मु सब ऑफिसर कर्मचारी मानक आदेश देची पात्रपुर अंचल को विशेष ध्यान दे सब प्रकार सहाय करबू
6: सार
4: तमें तो ये अंचल मुखिया लोक तमें खुशी तो
6: मंत्री महाशय
4: हाँ
6: मोर बोध कहबार
4: हाँ
6: मत बुझना न कही पा रही पारू ना अनुमति दे कह
4: हाँ कह कह
6: सार मु अति अपंतर जगह जाए सब बुले
4: अच्छा
6: से रिलीफ सामग्री एजे पहुंची पारे ना बुझे सर केवल गाड़ी मटर और लंच जो जो जगह जाई से जगह रिलीफ जिन पहुंची जाए सारे मोर गोटे विघ्न प्रस्ताव

0: तुना तो कौन?
1: सर सर नव कुमार बेंट कोसिया सर।
0: केते वर्ष होला चौकीदार हेलुनी?
1: 12 वर्ष होला सर।
0: 12 वर्ष होला ना
1: सर।
0: देख ना बो तोर छुआ पिला अछंती
1: सर,
0: जदि तोर छुआ पिलांकर मंगल चाहू सत कथा कहिदे, एठी केही नाहंती। सत कथा कहिले मु तते केस मुक्त कर देबी, प्रमोशन पाइबू। आ सत कथा न कहिले हे घणा पेलेबू, जहा तोर इच्छा।
1: मु किछि जानिनी सर।
0: सबु जानिछु सत कह।
1: नाही सर मु किछि जानिनै।
0: मिछ कहनी विपद रे पड़िबू।
1: महाराण सर किछि जानिनी सत कहू।
0: अरे अरे तो मा तो मरी गलानी।
1: हो सर।
0: आ महाराण रो मूल्य कोन? नबो ए नबो
1: सर,
0: तू कहिछु बोली केही जानिबेनि, सत कथा कह।
1: मु किछि जानिनी सर।
0: अरे मकरार स्त्री गाँ लोक सांगे मु कथा हेसी, ड्राइवर भी सबू कही लुचेले कथा कौन लुचब, मानि गले बर क्षमा पाइबू। सत कथा कह, मकरा के किए मार
1: थाना भितर सान बाबू मारे मकरा मरी गला, थाना जीप रे नहीं सान बाबू नई रे फोपाड़ी दे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, किए सांगरे जाइथले जीपरे?
1: सानो बाबू मते भी सांगरे जीबाकू कहिले।
0: नितंग मान जानती?
1: हो सर।
0: ठीक अछि। अच्छा तू जा जा जा जा तू जा।
1: सर सर मते माफ कर दियो सर, मोर किछि दोष नाही, मते बाध्य करिबारु काली सांगरे जाइथली।
0: अरे सान बाबू बाध्य कले पु गुट पड़बू जानु, प्रकृत अपराधी ठार अपराधर सहयोग कर लोक बेस दंड पाइबा उचित। मोर देखा चाहिए तुम्हें मान ये देशर कलंक। नितानंद महांती तुमको कार्य सस्पेंड करागला, वीरवर दास एवं ड्राइवर मध्य ए अपमृत्यु पाई दायी, समस्त को सस्पेंड करागला।
2: सर सर क्षमा कर सर, भूल हो जाइछि सर।
0: भूल हो जाइछि ना, रक्षक जदि भक्षक हुए ताको उपयुक्त शासि मिलिया उचित।
2: हाउ एमिति भूल हबनी सर,
0: लाज लगुनी एक कथा कहबाकू।
2: थाना बाबूंकर किछि भूल नहीं सर, जहां दंड दवा कथा मते दिंतु सर, मु दोषी दोषी सर।
3: ना वीर बाबू मु ए थाना दायित्व थिली, तेणु नीति दृष्टि मु सब भूल पे दायी। सार जहां दंड देवे मु मुंड प्रति ग्रहण करने प्रस्तुत अच्छी।
0: आई एम सॉरी महंती, तुमको मध्य सस्पेंड करने को मु बाध्य।
3: आपन ठीक कर चुन सार, मु भी नैतिक दृष्टि ए अपराधी दायी।
0: शट अप, डोंट डिस्टर्ब मी, मत रिपोर्ट लिखे दियो।

0: मो मुंड कण हो जाऊ
1: कौन है एसपी कौन जानी गले
0: हाँ खाली जानी ना थी मते अन्य मन को सस्पेंड कर चुके
1: कौन कह चुके तुम्हें
0: हाँ विजय मो आज दायित्व मुक्त ए टोपी ए बेल्ट ए खाकी पोशाक खोल दबा को पड़ी
1: सुश्री सुश्री यही सुनी भाग बाकी थी
0: तमें कौन जान नहीं थला जे तमें जाने पुलिस ऑफिसर को बाहर चुप बोली चाकरी रे केते उत्थान पतन केते अभिज्ञता अनुभूति केते क्षमता पुणी केते पदले हन मु आज समस्त बंधन मुक्त स्वाधीन
1: तमें तो किसी दोष करना कही दौन सब कथा एसपी सत कथा जाणिले तुमको तो दोष दे पारिबेनि
0: को कथा कहिबी आ कौन अछपा अछि सब तो मो कथा मो थानार कथा सब तो मो लोकों को कथा
1: तमें तो जीवन सारा अन्य पाई निज को बलि दे आस निजर सब स्वार्थ को जलांजलि दे निज कथा निजर घर कथा के बुझी छ निज स्त्री कथा निज पिला मान को कथा के चिंता कर छ हमर जीवन अछि आशा आकांक्षा अछि एक कथा के भाभी छ खाली ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी राति दिन हाड़ भंगा परिश्रम करी कौन पाइल यही पुरस्कार पाइल
0: विजय तमें तमें एमती भांगी पड़े हम सब बड़े राति न थाए पुणी सकाल हम सूर्य हम
1: आउ कौन ये राति पाइब सका हम मोर तो विश्वास हो अंधार भितर मुझे अच्छी अच्छी
0: ना विजय ना भगवान को ऊपर आस्था रख लोकों ऊपर विश्वास रख निजे दृढ़ हो सब विपद आपे आपे बचीज
1: लोके तोटा परिहास करिवे अंगुठी देखे हसीबे पूरी अपमान सही परिबिनि सत कहुची मो आत्महत्या कर देली
0: विजय
2: मम्मी ना कौन है डैडी डैडी मम्मी कांदु चुके हैंगी मम्मी मम्मी तमे कांदु चुके हैंगी
0: छी विजय कांदो नहीं इटा कांदी पर बेलो नहीं थर्चो थरो जीवन जुथर सामना करे सिखो विजय
2: डैडी मम्मी रे कौन हैला मम्मी तमे किछ कहो न कहगे तमे कांदे छ मम्मी छी बड़ मन कर कांदे थी देखो मम्मी तमे जदि कांदे बा ना मु भी कांदे भी
0: अरे ना बाबा सुनटा करा चैनो चैनो ए देख मम्मी चुप हो गई हैं हां ए तो तू चुप ही जा हां हस हस हस हम्म

0: चूड़ा चकटा खाइदे बापा नहीं
1: ना मु खाइबिनि मु जमे भी खाइबिनि सडा किछ
0: कभी तू काहे के एमते जीद धरछु कहलो सुना टपरा खाइदे सकाळ किछ खाइनु भोक हबनी नहीं
1: ना मम्मी कहिले पर मु किछ खाइबिनि बोले
0: पपी
1: सत कहू छी मम्मी डैडी नसले मु किछ खाइबिनि मम्मी डैडी काहे के आसु नंजी

0: कोताव गिल्लो कुन्ना जी कहेंगे
1: पपी
0: सब तक वो मम्मी डैडी कहाँ थी सब कुआं से छिंदी मम्मी मुझे निजे जीवित को खोजिए न भी
1: ना पपी तू पिला लोगों डैडी ऑफिस का मेरे बाहर कुछ ऐसे दी किसी दिन पर फेरी ऐसे भी तू खाई दे
0: ना मट्टे नहीं तू मत मिच्छो को जा हाँ मुझे सिन्ना डैडी को हाजिर भीतर देखी थी
1: पपी
0: हाँ मम्मी सिन्नुआ थाना बाबूटा ना मते आखे कटमट करी चाहला थानर बाजीवा को पार्टी गला ता परठ मु डैडी को आउ देखिनी
1: आसीबे बापा तू खाई दे से आसीबे
0: धर्मपद जिंदी ता बापा को खोजिबा को घर बाड़ी रे बरकली नी बाहर पड़तिला मु भी सेंते डैडी को खोजिबा को जिबी मम्मी तमे मते आज मना करनी मु जिबी डैडी को खोजिएबी तुमे कवर्ड खोले मम्मी मु जिबी
1: ना ना बबी ना
0: ना मम्मी मु जिबी माजी तुम को तो जम्मा सुनबिनी
1: बबी
0: ना मुझे भी डैडी को न देखा जी मैं किसी का भी नहीं
1: बबी।

0: मो स्वामी पई आपण ते व्यस्त काहे की खाइबा को देबे ना पोसीबे ना चाकरी देबे
1: तम स्वामी मकरा को किसी दिन तमे मारी दिया जाई छी
0: ना मिच्छ कथा मु मिच्छ कई एते बड़ बाप रे भागी ही परबिनी मो स्वामी पंची था तू दाक मारी दियो तुनी मु मु आपण को गोड़ धौ छी
2: आज पई अदालत मुलतवी रहिला आसंता शुक्रवार दिन पुण विचार हबो समस्त साक्ष्य प्रमाण शुणा पर मु सिद्धांत उपनीत हेली जे मकरा मृत बोली जथेष्ट प्रमाण मिलला नाही अभियुक्त व्यक्ति माने अपराधी बोली संदेह करी दंड देवार अधिकार अदालत रे नाही अतएव निर्दिष्ट प्रमाण अभाव रु अभियुक्त व्यक्ति मान विरुद्ध कौन सी कार्यानुष्ठान ग्रहण कर सुतरां नित्यानंद महांती गिरदास समेत समस्त अभियुक्त व्यक्ति को क्रिमिनल प्रोसीजर 232 दफा अनुजाई खलास कर दिया गला

0: जुहार सर, जुहार।
1: अरे कुंज कमली, आस आस आस, मु तुम उपकार खोजिपारिनी कुंज। ससरे तमें कितने उदार,

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। शुणन्तु चलित अधिवेशनर कार्यक्रम सम्पर्कर सूचना। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 68।

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

0: सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन ऑपरेशन अमिस्तादित्यस्यान्तर्गतं भूकंपग्रस्ताय वेनेजुएला देशाय स्वकीया मानवीया सहायता प्रेषिता। विदेशमन्त्रालयेन सामाजिक संजालीय तन्त्रे प्रचलितस्य चिकित्सा कार्यस्य चित्राणि प्रसारयता सम्मुलिखितं यत् भारतीय सेना क्षेत्र चिकित्सालयः प्रभावितेषु समुदायेषु निरन्तरं चिकित्सा सेवाः प्रयच्छति। वेनेजुएला स्थितेन भारतीय दूतावासेन कथितं यत् अस्मिन् दक्षिण अमेरिका राष्ट्रे भारतस्य व्यावसायिक सेवा गुणवत्तायाः जनसामान्यैः भूरिशः प्रशंसा कृता। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः डेल्सी रोड्रिगेज इत्येषा सप्तदिवसीयस्य राष्ट्रिय शोकस्य घोषणां कृतवती। अनेन भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 95+500+2000 संजाता। पश्चिम बंगाल विधानसभाया नवनिर्वाचितानां सदस्यानां कृते आयोजितस्य द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य अद्य कोलकातायाः न्यू टाउन कन्वेंशन केन्द्रे लोकसभाध्यक्षेन ओम बिरला इत्यनेन विधिवत् उद्घाटनं विहितम्। उद्घाटन समारोहात् प्रागेव लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला वर्याय गार्ड ऑफ ऑनर इति राष्ट्रिय सम्मान प्रणामः समर्पितः। उद्घाटन सत्रं संबोधयन् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला प्रावोचत् यत् विधायकानां कृते विधि निर्माण प्रक्रियायाः तन्त्रस्य च गभीर ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा पश्चिम मध्य प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टेः रक्त संचेतना प्रसारिता। अनेनैव सह छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश विदर्भ क्षेत्रेषु झंझावातस्य विद्युत प्रपातस्य चापि संभावना प्रकटीकृता। विभागानुसारं श्वः यावत् उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक जम्मू कश्मीर लद्दाख तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना पूर्वोत्तर राज्येषु अपि अत्यधिक वृष्टिः भवितुं शक्या। फीफा विश्व चषके कनाडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। इतिहासे चतुर्वारं प्रागुपान्त्य चरणे गन्तुं स्विट्जरलैंड दलं आगामी मंगलवासरे अस्मिन्नेव स्थाने कोलंबिया अथवा घाना देशेन सह स्पर्धिष्यति। अन्यस्मिन् द्वन्द्वे स्पेन देशेन कैलिफोर्नियायाः लॉन्स एलेंजेस क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 चक्रे ऑस्ट्रेलिया दलं 3-0 इत्यनेन पराभूय राउंड ऑफ 16 चक्रे स्वस्थानं सुरक्षितम्। अपरत्र कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे प्रवृत्ते द्वन्द्वे पुर्तगाल देशः अपि क्रोएशिया दलं 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्राप्तवान्। मंगलवासरे डलास नगरे राउंड ऑफ 16 चक्रे पुर्तगाल दलं स्पेन देशं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଗୀତ। ପ୍ରଥମେ ଗାଇଛନ୍ତି ପମି ଓ କୁମାର ବାପି।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।
2: अपन मने कार्यक्रम सुनुचंदे आकाशवाणी कटक केन्द्ररु प्रचार करुछु हिंदी चलचित्र गीत। प्रथमे गाइचंदे लता मंगेशकर चलचित्र कभी खुशी कभी गम।

0: ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ସୋନୁ ନିଗମ, ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକ ଏବଂ ସାଥୀ।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोडमैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी

0: प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे। तीस्ता इश्यू।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात

0: रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर

0: नेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 아우 무서워 바로니. 아우 무서워 바로니. 알라 벌써 벌써 비티거라. 헬리 켜도 모로 숙히라나. 뭐 아본 치바 구차하니 알라. 마트 브르뚜디어 마트 브르뚜디어 마트 투네이자
1: 게이터 나한테 가상그리 거타오쥬
0: 아리 고파라 도와스쥬 바이 뭐아오이 거스터 서히 바로니 고파라
1: कला कर्म भोगिबा को हबो सालबेग तो बापा लालबेग सिना निष्ठुर थिले हेले
0: मु मत निष्ठुर हे जाय छी तानो हेले मां को कथा न मानी मु कोन अफगान बे त्रह तो मन करबा को चाहि थांती
1: मां को कथा न मानिबार फल जानिलु तो मोगल सम्राट जहांगीर रहिले दिल्ली रे आउ तांको आदेश रे सहस निरीह लोकन को हत्या कलु किंतु आजि तमरे कष्ट देखिबा को से त काहे कि आसु नांती
0: तू आउ तांको कथा कहनारे गोपाल हरि सोस टिके पानी तलु भाई
1: पाटी खोलो मु पानी दोची हाँ, एबे सोई पड़ो, मु तो माँ को पाखरे अच्छी।
0: हो, मु सोची, सबसे याला रहिच्छा, सबसे याला रहिच्छा।
2: चेष्टा कला परे भी सालव को मोर भल हैलानी गोपाल इबे कौन करिबी कह ए दुखिनी ललितार एक मात्र साहबर सा जगन्नाथ महाप्रभु भी मो पे आज पत्थर हे गले पु
1: के कहला माउसी से पत्थर से सबु देखु चंती सबु जानु चंती से परा अनाथर नाथ जगन्नाथ
2: हाँ बाप सी सब देखुची सब जानुची कौन विधवा हिंदू झील ललिता आज साजि था चवन लाल बेगर बेगम
1: छी मौसी से पछ कथा को भावुच कहीं बर तुम एक बला साल बेग केमी भल हब से कथा चिंता कर
2: तार से दुख जंत्रणा मु देखिपार पुह इते कष्ट सात शत्रु को नहरे पु
1: मो मन किंतु कहूँ सालबेग निश्चय भल
2: चिते कहली प्रभु चकडोला शरणनी से कौन शुणिला
1: से शुणब मौसी ता बेल आसिले से ठीक शुणब तमें आउ थे चेष्टा कर ना मौसी मुझे आसुची
2: सबुदिन एमती आसुथु रे पु तते देखिले मोर दुख कष्ट मु सब भूली जाए
1: मु निश्चय आसीबी मौसी तमको आउ सालबेग भाई को न देखिले मते कण भल लागिबो मु आसुची

हे प्रभु चकाटोड़ा हे हतभाग्य साल बेकर तमें ही साहा भरोसा प्रभु तमें ही साहा भरोसा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक,

आईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कलह पचाति भूतानि, कलह संघरति प्रजा, कलह सुप्ति सुजागर्ति, कलह ही दुरति क्रमः। आम देशर महान पंडित अर्थशास्त्र प्रणेता आचार्य कौटिल्य बा चाणक्यंक द्वारा रचित एही संस्कृत श्लोकर सार मर्म हेउछि, एही संसारे सबुठारु बलवान हेउछि काल बा समय। ए जगत कालर अधीन, कालर प्रवाहरे समस्त क्षयशील। प्राणी माने निद्रा गले मध्ये काल सेमानकठारे अविरत विद्यमान। काल बा समय को अटकाइबार शक्ति कहार नाही, कि समय कहा पई केबे अटकी जाए ना, से सदा चलमान।

0: एका एका।
1: हाँ श्रोता बंधु, समय सबुबेले गतिशील, से कहाकु केबे अपेक्षा करना। समय को सुविनियोग करी मनुष्य काम करी चलेले समय ही आने सफलता। से समय आनी आउ एक सकाळ, सूर्य देवंक आविर्भाव रे ए जगत पाइछि आउ एक दिनर कोमल स्पर्श। एही सकाळ मनुष्य मनर सब पुरणा क्लांति को पछक पकाई मनरे आनी अनेक संभावना, अनेक नुआ आशार किरण। एही सकाळ ही आरंभर बेळ, दिन जाकर काम पाई प्रस्तुतिर बेळ। आज प्रभातरे ए संपर्क रे निजर भाव प्रकट करते साहित्यिक डॉक्टर शरत चंद्र विश्वाल।
2: प्रभात आसीजाए मन एक अपूर्व आनंद लगे उठे, काकड़ी मन मन शिहरण सृष्टि करे। पूर्व दिगर प्रात काल सूर्योदय कमनीय दृश्य सत्य शिव और सुंदर उपासक होगा प्रेरणा प्रदान करे। ग्राम अणवसारिया दुआ दांडे बाल सूर्य किरण पड़ी एक स्निग्ध मंजुल परिवेश सृष्टि करे। प्रजापति माने फुलरु फुल को उड़ी बुलू था। दिनर कार्य आरंभ करिया पूर्वरु विभु पद्म पादरे भक्तिपूत मन समर्पित हो जाए। कंठरु झरी पड़े विभुंक उद्देश्य भक्ति नैवेद्य। प्रत्येक मनीष पिलाठारु आवार वृद्ध बनिता भगवान को डाकि भगवान को प्रार्थना करी जो विभु को स्मरण करी आरंभ कर। तेणु मनीष जीवन रे प्रभात एक अपूर्व शांत स्निग्ध परिवेश सृष्टि कर पवित्र से मुहूर्त हूँ पवित्र ब्राह्म मुहूर्त जहाँ कहते सेटा हूँ अति पवित्र एवं से पवित्रतार मन नहीं मनीष भगवान तार मन को लगे एवं तार दैन

0: माने
1: आपन को नाटा निश्चय ओरे आरंभ
0: आपन केंती जानले
1: ए आपन का अंगुठी मुदी ऊपर ए लिखाइस तो
0: ओ किंतु
1: मो ना अंबुज अंबुज साहनी मने रखंतु मु आपन को अभिभावक ए लोक मान को सामने रे हम को किछ बाट एई भली अभिनय कर खबर
0: ठीक अछि
1: हां आपन को नाटा कहले नि जे
0: मोना मोना अश्रुमुखी अश्रुमुखी सिन्हा
1: मु जदियो पंजाब रो अधिवासी तबे ओडिसा रे मो बापंकर बिजनेस थिला एणु ओडिसा सहित मोर संपर्क खूब घनिष्ठ हो एथो चुपचाप बसंतु सावधान आमी एई मात्र परिचित हेले बोली ए लोक गुडा को जंती किछि न जानती
0: अच्छा अच्छा ठीक अछि
1: कौन हला
0: नहीं किछि नहीं मुंडोटा काई के बुले देला
1: तमे टिक सोई पड़ ऊपर बत तो खाली अछि
0: ठीक
1: अच्छे देखो सावधान धीरे धीरे ऊपर उठ जाओ हाँ ठीक अच्छे
0: हाँ
1: जाओ हाँ असु

0: से अनुराग नुहे अरु अरुणिमा
1: करुणिमा
0: हाँ मो झी अरुणिमा
1: करुणिमा कोठे
0: आग्रा रे मो घरे
1: आपण
0: मो अंबुज अंबुज सानी
1: अंबुज सानी
0: हाँ आपण ट्रेन रे एकाका दिल्ली जाउथिले मो आपणकर अभिभावक साइज थिली आपण बर्थपुर को
1: मने पड़ला बर्थपुर को चढ़ला बेले मो मुंडटा बुलाई देला मो पड़ी गली तापरे मो किछ जान नै
0: आपण गाले रे मुंड रे भीषण आघात पाइले दिल्ली नबा आउ संभव हेलानी एणु बाध्य एठी मो घर रखी चिकित्सा करछि आपण परे सुस्थ ही आसलेनि
1: मो मो जीबी
0: कोठी जी
1: घर
0: कोठी कहि परिबे
1: निज घर कोठी कहि परिबे नि
0: अनेक दिन त पारि नथिले
1: माने
0: माने गत जुलाई मास रे आपण एठी आसथिले आउ एटा होची डिसेंबर
1: एति गुडा दिन
0: कोन करा जाय आपण कर आघात भी खूब गुरुतर थिला
1: आपण अजथा मो पाई खर्चन थले अंबुजी बाबू
0: ना ना ना एटा तमर कर्तव्य से दिन ट्रेन रे मु आपनकर अभिभावक साजी नथिले से अभद्र लोक गुडा को आपनकर निश्चय क्षति करथांते
1: आपनकर ऋणमय जीवन रे सुझि परिबेनि मो पई त एत्ते खर्च कलेनि दया करी घर पर्यंत गोटे टिकट कर दियंतु मु पहुंचिबा मात्र।

0: तमे पिलांग परी कथा कहो जो ए दुनिया रे केही कहा पई अपरिहार्य नै से दिन चंद्रापा थिले आज मु अछि काली के जदि हठात मु मरि जाय पुनि आउ के आसे मोर स्थान पूरण करिवो तमे चंद्रापा को हरे जेमिति बंचि पारिलो मते हरे मते ठीक बंचि पारिबो मृत्यु उपरे मनीषर नियंत्रण नाही जते बेले मिछ प्रतिश्रुतिर कोनोसी मूल्य नाही बुझल तमे सोई पड मु देखे अनुकाले स्वप्न रे हावळी खाई उठि पडिबो
1: किए से सरकार पकड़े छिड़ा ही थी ए चंद्र ना ना तो फेरी जाओ मत टिके बंचवा को दियो मु किछे दोष करनी तुमको केबे अवहेला करनी तथापि तुम अभिमान करी चली गलो ना जाओ चली जाओ तुम चली जाओ
0: कौन है ला अरे सुनो तो ए कौन है एमिति चित्कार कोन पई कि कोन स्वप्न देखलो
1: ना ना स्वप्न नुई मु झरका बटे आकाश रो जन्म को चाहिथिली हठात चंद्र रो प्रेतात्मा को देखली ए झरका से पटे रेलिंग धरी से ठियाइथिला मते विश्वास करौ सा
0: काय कोथे के तो नांती तमे निश्चय स्वप्न देखि छ
1: ए स्वप्न के जानि हेतु
0: हो तमे सुओ मु झरकाटा बंद कर दउ छी रिक्शा, स्टेशन चल।

0: अरु त सहज पिला
1: ताको बेसी दिन बाहर रखिया भलो नै
2: हा ता नै त कोन मा जे माउसी से मा बदल रे माउसी के आदर नबो दीदी को पाइले से मा को खोजिबनी
0: किंतु अश्रुदेवी त
2: जाने जाने बाबू से भी परमणीस हेले अरु ताको ठीक आदर नबो देखु ना ताको कोळरे केमिति तू नै सोई पडलानी
1: सेमिति काई भावछ रेखा पर मनीष कौन निज लोक हे परिबनी पर पिला को कौन स्नेह आदर दे परिबनी
2: हां पारिबो हेले केई दिन तमे दीदी मा हेई न मा हेले जानिबो निज पिला रो मुह संसार रो जाबते चीज ठुबि सुंदर निज पिला पई जे दुख कष्ट सोई हुए पर पिला पई ता करी हुए नी
1: निश्चय करी हुए रेखा निश्चय करी हुए पर पिला भितरे निज रो हजिला धन को खोजी खोजी ताको पाई जे बार मिछा आशा भोरी भितरे निज को हजे देवे तुम्हें तमे से सो पूछि परबो नि रेखा
0: अपन आसंत अश्रु देवी रेखा को अपन कथा रे पारिबे नि आसंत म अपन को हॉस्पिटल नै जेबे रेखा और सोई छी ता ऊपर नजर रखतु

0: जरूरी जदि किसी न भावती गोटे प्रस्ताव देवी
1: कहतु
0: आपण को बेस किछ दिन तांको पाखे पाखे अनुर परिचय दे रहयक पड़िबो धरंतु अनुभूमिका रे आपण अभिनय करछंती धीरे धीरे से आपण को आगे निजर समस्त अतीत खोली देबे तांको चिकित्सा पई तांको विगत जीवन रे इतिवृत्ति जानिबा आब नितंत आवश्यक
1: मोर आपत्ति नहीं
2: किंतु ता केमिते हो डॉक्टर प्रसाद तांको पाठपडा छडी सेठी पढि रहय कोन संभव
0: चाहिले से एठी मते पढि परिबे ट्रांसफर सर्टिफिकेट आनिबा तांकर किछ असुविधा होबो नी ना कोन कहछंती असुर देवी
1: हां सेया करबी
0: आपण को सहाय्य पाई अनेक धन्यवाद जाहु एणिकी मिसेस साहनी को चिकित्सा रे कौन सा असुविधा हबनी।

0: अनु अनु मुझे तो मारी देले लो मुझे तो मारी देले अनु अनु
1: रेखा रेखा पानी आनी था मुहर छाटी लो मुझे चेता बुड़ी गला
2: अरुणिमा अरुणा
3: डैडी
2: अरे ये कौन है अरुणा कांदस कहीं की
3: जाओ देखी मत जाओ पिटी पिटी माँ किंतु आंटी को खोंडिया खबर कर दी चंदी
2: आज उन पूर्ण था पगड़े में बाहर ला असल देख बा अथरु अथरु
1: चुप पार्टी करो तनी दीदी एक नहीं सोई ची उठी पड़ी बा आसुन तो यारे चले आसुन तो
2: रियली आई एम सो सॉरी मु खूब लज्जित अथरु अरुंधत्र एटा घोर अन्याय ताकू किंतु दंड देले से जदि किछि बुझि पड़थांता हम ताकू कठोर शास्ति दियंती किंतु कोनोसे शास्त्र योग्य से नहि
1: ताकू की शास्ति देबे आपण से जहा करछि निजे कोन किछि बुझुछि ता छड़ा एटा तो किछि नुवा कथा नहि आगुरु तो अनेक थर मते मारपीट करिछि अवश्य आजिर आघातटा टिके बेसी किंतु एमिति आघात तो से अनेक थर आपण को देछि
2: अरुणा अरुंधति तो आघात सहले किसी जाएसना फिर तो आम घर कथा आम निज कथा किंतु तमें अलग अजथार तमें कहीं आम कष्ट पाइब
1: अबुझे बाबू जीवन रे कौन थरक भी निज को यह घर जन मनीष बोली भावार सुजोग मत आप देवे ए घरे मोर कौन अधिकार मुझे सब्यस्त करने को चाहे तथा मत लगुच को अनंत काल जमी मुझे घर रही एटा मो अरु दीदीर घर अरुणा मो झी अथच आज बुझुच एटा पर घर पर लोक दिने हुए तो मत घर चली जबार निर्देश मिल सतरे ए दुनिया रे जार घर खंडे ना तार निजर बोली कही ना
2: ना अश्रु तम हुए तो मत भूल बुझल मो कहार अर्थ ता नुहे बेले बेले मो निजर आत्मग्लानी मत दंशन कर तुम अजथा जीत को मानि नहीं से तुमको भल पात्र हाथ में छंदी दे नी निज माँ पेट भाई होते मुझे आज पर्यंत मो भी को अविवाहित रही था तुम्हें किसी न कर ग्लानी मत तुम पाखे पर मनीष कर दे अश्रु से ग्लानी में दूर को दूर को ठेली कौन ये भावुच
4: दीदी ना से घर थी बाबू को कथा मुझे सब शुणी म से भी किसी भूल कहीना सत कह गि तुमको से निजर बोली भाभी था तुम कि गोटे व्यवस्था कौन से करे आर्ष कईटा पर अरु बाहसा है ता

0: गई, समस्त लेखे घर छाड़ी चली आसली।
1: असुर कौन लिखी थला से चले
0: लिखी थली मोर मृत्यु पाई कई दायी नुहति, मानसिक अवसाद जो मृत्यु बरण कर घर चली आसी भाविली दिल्ली रे मो बांधवी घर को जी से पहुंचा पर आदित्य को चिठी लिखे मत आई जातु भावी मो चिठी पाई से व्यस्त भी चलित धाई आसबे मत फेरी नवाप मोर सत घर संसार को मुज हाथ में भांगी दिली निजर सर्वश्रेष्ठ अधिकार निजे वंचित
1: कह कहीं मत तुम एम शास्ति दल कि दोष करी
0: तुमको नुह निजे निज को कठोर शास्ति मो बदल उषा तुम जीवन तो परिपूर्ण हो गला आदित्य मु रहीगली निहाती असंपूर्ण असहाय
1: तु फेरी चल चंद्र तुम स्त्री धर्म को साक्षी रखा मत विवाह होता
0: ना, ना, मु चंद्र नुहे मु अस्रमुखी अरुदेवी भौणी मो स्वामी ठिकाना मत जाना
1: नहीं कहन चंद्र तो मो स्त्री तुम तो बिना मुझे बचमी
0: ये काकुति मिनतीर प्रहसन कहीं आदित्य से दिन घर छाड़ा पर मुझे कथा चिंता करी अथच मो अपमृत्यु को गोटे भिन्न रूप दे तुम्हें तो संपन्न हो गल सब सत अंबुज बाबू स्वामी मो प्रति प्रेम गभीरता मापिबा को मु गोटे छोट मिछर आश्रय नहीं अथच से छोट मिछ एक विराट मिथ्यार रूप नहीं तारी कंडित परिधि भितर मत निष्पेषित कर पकई मोर से दिन चपल परस अक्टोपास पर मत आक्रमण कर मत निश्वास कर आज बुझुची मोर कैलकुलेशन भूल था मो जीवन गणित समाधान हो पारानी तुम्हें फेरी जाओ आदित्य मो तुम एकातरक्ति आज अर्थहीन
1: किंतु सत्यटा को चापी दी तुम्हें कितने दिन एमती निर्भेद ही रही थो चंद्रा
0: बहुरूपी भाई मु रंग परिवर्तन करुछि प्रथमे साजिथिले तुम अंक लक्ष्मी परे हे गली अरु दीदी स्वामी परित्यक्ता निर्जातिता छोट भूणी अनु एबे फुणी मो देह एक नुआ रंग लगे
1: सेविका
0: हाँ बुझ बाबू मो आखि आगे विराट मेंटल हॉस्पिटल दीदी आत्मार जीवंत तो स्मारकी जाशुणी जीवन सारा जर्जरित तो ही आसली बाकी जो केत दिन बंची से उत्प्रांत विकृत मस्तिष्क असह रोगी सेवा कर प्रायश्चित कर
1: सतरे बड़ अद्भुत झील विचित्रता जीवन दर्शन शेष मुहूर्त पर्यंत भी परपाई श्रम देवा से कुंठित नुहे यू कौन हो गल अंबुज एत वर्ष पर एमती भाव चंद्र को आविष्कार कर मो निज मन भारस्यम हर बस बस्तान आदित्य ए अतिक्रांत बयस निजर आत्मसंतोष भितर आछ वर्ष बंची रहा सुजोग दे बंधु हिसाब से तेज मोर एक अनुरोध
2: आपुले नाटक मेघ मेदूर विभिन्न भूमिकार अंशग्रहण कर अंबुज अमरेन्द्र चौधरी आदित्य प्रेमांजन परिडा डॉक्टर प्रसाद जयदीप्त दास महांती बाबू बाबाजी चरण साहू सहयात्री शिवेन्द्र दास अरुण

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटी और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: कम समय रे अधिक फायदा मात्र गोटे क्लिक रे बढ़िया
1: अधुना लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही आरबीआई कहे
2: सचेतन हुंतु सतर्क रहंतु
3: कस्टमर केयर तरफ रु फोन आसीथिला कहुथिले तमरा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो ए लिंक परथि एपीके डाउनलोड करिनियंतु
4: ठीक लागुनी स्कैम भी हेइ पारे।

तपस्या क्षेत्र राजा उत्तन पद पहुंची गले रे पुओ आ ये तपस्या करो ना मो संग रे घर को फेरी आसो तू आज राज सिंहासन समस्त अधिकार करीब रे चिंता कला अल्प टिके भजन कीर्तन करू करू बापा से कला सिंहासन धारण करने ध्रुव पंडित कहवाक गला नंद नंद।